0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब

0: संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, शब्द से इंसान की पहचान होती है। शब्द एक तरह का भोजन ही है। अगर स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परोसिए। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुने भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा में प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हमें रही प्यार के ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:30 पर। त्रिवेणी कार्यक्रम 8:15 पर। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर।

गायक और संगीतकार भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम सुबह और रात सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर। दस बजे गीतों भरी कहानी भाई हो तो ऐसा, लेखक और वाचन स्वर श्याम माहेश्वरी का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी।

11:30 पर मैटिनी शो के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे रूपक जल है तो कल है। इसके अंतर्गत पर्यावरण विशेषज्ञ शुभजोत मुखर्जी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। यादों की महफिल ये कार्यक्रम सुनिएगा 12:05 पर। 1 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 2:30 पर। मन चाहे गीत ये कार्यक्रम दिन में 3 बजे से। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नाटक जमीन आसमान, लेखक हैं अनूप सेठी। शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम 6:35 पर शाम।

शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। अभिनेत्री जरीना वहाब द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे से। ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत सुनो कहानी विश्वास का तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे। ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। भूपेंद्र सिंह पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 पर। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे से। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 253। प्रसंग है अरण्यकांड।

शूर्पणखा से खर दूषण समेत राक्षसी सेना के विध्वंस का वर्णन सुन रावण के अंग प्रत्यंग जल उठे। बालक दिखने वाले दशरथ पुत्रों की वीरता और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री के होने का समाचार जान रावण सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी किसी योनि में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उसके सेवकों का भी सामना कर सके। यदि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है तो वो हट पूर्वक उनसे वैर मोल लेगा और स्वयं प्रभु के वाणों से मारा जाकर मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा निश्चय कर वो रथ पर अकेला सवार होकर वहां चला जहां सागर तट पर मारीच रहता था।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही है मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की कड़ी में आज सुनिए राग पूरिया कल्याण।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को आरती अंकलीकर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप तो जानते हैं कि हम संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ विवरण कुछ चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं रागों में संधि प्रकाश राग पूरिया कल्याण, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है कि

गायक जो है पूर्वा कल्याण और पूर्या कल्याण, इनको एक ही राग समझ के जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्वा कल्याण एक अलग राग है और पूर्या कल्याण अलग है। पूर्वा कल्याण में जो ऋषभ है वो मारवा की तरह, और पूर्या कल्याण में ऋषभ जो है पूर्या की तरह लगता है। हालांकि देखा जाए तो इसके स्वर एक ही हैं, लेकिन ये जो ऋषभ का ट्रीटमेंट जो है वो दोनों रागों में अलग है। इसकी वजह से पूर्या कल्याण और पूर्वा कल्याण ये दोनों अलग दिखते हैं। आज हम पूर्या कल्याण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पूर्या कल्याण का जो जन्म है मारवा ठाट से हुआ है। आप जानते हैं कि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। संध्या काल में पूर्वी और भैरव ठाट जन्य पूर्वी गौरी आदि रागों के गाने के पश्चात इस राग को गाना चाहिए। इसका कारण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें धैवत जो है शुद्ध लगता है। और पूर्या, पूर्या धनाश्री, श्री, लेकिन बाकी जो राग हैं उनमें धैवत कोमल है, मारवा में तो शुद्ध है। तो इन रागों को गाने के बाद, यानी पूर्या धनाश्री पूर्या, इन रागों के बाद कोमल ऋखब और शुद्ध धैवत लेके जो राग आते हैं उनकी बारी आती है। तो ये पूर्या कल्याण जो राग है संधि प्रकाश राग होने के साथ साथ एक परमेल प्रवेशक राग भी है। कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत होने के कारण ये राग अपने पश्चात आने वाले रे ध शुद्ध वर्ग के रागों की पूर्व सूचना देता है। रे ध शुद्ध वाले रागों के पूर्व एवं रे ध कोमल वाले सायंकालीन संधि प्रकाश रागों के समय, यानी कि 4 से 7 बजे सायंकाल के अंतिम चरण में इस राग को गाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रचार में तो लोग 11 बजे तक भी इसको गा देते हैं, बजा देते हैं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। इसको 7 बजे यानी कि सायंकाल के अंतिम चरण में ही गाना चाहिए। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी है निषाद। पूर्यांग से पूर्या कल्याण जो जाता है हम देख चुके हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग पूरिया कल्याण पर आधारित अब एक गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मशहूर गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री को रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Sanjay Mattu. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting the local culture, heritage and architecture. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
5: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
4: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometer distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश को दी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया शुभारम्भ। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित 13 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले में बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित। किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की अपील की। और प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट।

0: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देशभर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित कुल 13 स्टेशन शामिल हैं। इस मौके पर सांची में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अशोकनगर में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले को करीब 189 करोड़ रूपए के 72 विकास कार्यो की सौगात दी। उन्होंने टीकमगढ़ एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की।
2: आपने कहा मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनाया जाएगा, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आएंगे, सभी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, और उद्योग धंधे भी सभी प्रकार के लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके जो हमारे हरिशंकर जी ने कहा और जितने मित्र कह रहे हैं उन सबके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जुमागात सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे जवानों से संवाद करेंगे और पहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर हैं और कल रात सिलीगुड़ी पहुंचे थे। आज वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय अशोकनगर दौरे के तहत आज चंदेरी पहुंचेंगे। वे यहां शहरी जल वितरण योजना और नए चिकित्सालय भवन जैसे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं कल श्री सिंधिया ने अशोकनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए 21 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और खेल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने दिशा समिति की बैठक में जिले में चल रही करीब 5,200 करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल धार जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर व्यापक जन संवाद किया गया है और आगामी विधानसभा सत्र में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। महोत्सव में किसानों को कृषि यंत्रीकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मॉनसून से पहले और मॉनसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्वार और रिचार्ज पिट तथा चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल, पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि तय समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त कॉस्ट कटिंग नीति लागू की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी विदेश यात्राओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और वीआईपी स्वागत समारोहों के खर्च पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों को अब हवाई यात्रा में केवल इकोनॉमी क्लास का उपयोग करना होगा। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति हुई है। जेल मुख्यालय ने 40 अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। सहायक जेल अधीक्षकों को अब उप जेल अधीक्षक के पद पर

0: पदोन्नत किया गया है। जेल मुख्यालय में आयोजित समारोह में महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने पदोन्नत अधिकारियों को नई रैंक प्रदान की। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की तर्ज पर स्थापित किया गया है। टैलेंट सर्च 2026-27 अभियान के तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बैडमिंटन और टेनिस चयन ट्रायल्स आयोजित हुए। बैडमिंटन ट्रायल्स में 75 खिलाड़ियों ने और टेनिस ट्रायल्स में 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जो खिलाड़ी कल ट्रायल्स में शामिल नहीं हो सके उन्हें आज एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। डिंडौरी और उमरिया जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे बारिश तेज होने की उम्मीद है। वहीं भोपाल इंदौर सहित कई जिलों में आज हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की। खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून सुरगांव निपानी का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोर डुंडिया का निरीक्षण कर शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगर मालवा जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक में देवा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर शामिल हुए। जिला कोषालय नर्मदापुरम में IFMIS केयर्स के तहत 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद मंदसौर की PIC बैठक कल नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। टिंडौरी कलेक्टर के निर्देशन में जिले में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत कल जिले के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
1: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सही परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कुमार बारावंकवी का लिखा ये गाना था, फिल्म थी बारादरी और इसे गाया मुबारक बेगम और लता मंगेशकर ने। आज दोस्तों मुबारक बेगम की याद का दिन है। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ गाने उन्हीं की याद को समर्पित थे। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना था, खयाम का संगीत था, फिल्म थी शगुन और आवाजें थी तलत महमूद मुबारक बेगम की। दोस्तों आज जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन है, हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाद कुछ गाने हम आपको सुनवा रहे हैं मुबारक बेगम की आवाज में।

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, फिल्म थी हमराही।

सुन रहे थे तलत महमूद और मुबारक बेगम की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला। गंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और मुबारक बेगम की आवाजों में।

बालकवि बैरागी का लिखा गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और तलत महमूद की आवाजों में। फिल्म थी गोगोला, हमेरा ही प्यार के। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

उस्तादी उस्ताद से इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। संगीतकार थे राम लक्ष्मण। दोस्तों आज भूपेंद्र सिंह का जन्मदिन है, ये गाना उन्हीं के नाम था। और आज जाने माने अभिनेता राजेश खन्ना की याद का दिन है, सुनिए ये गीत उनकी याद को समर्पित फिल्म दो रास्ते। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आराधना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन। इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है।
1: आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144116 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े

0: रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी

0: शांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
1: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
2: Working to strengthen each other's
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
4: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है।

0: होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Katoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi Amritsar Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज जाने माने पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह का जन्मदिन है। चलिए विविध भारती परिवार की ओर से देते हैं उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। उन्हीं की आवाज में ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, इस्माइल दरबार का संगीत, फिल्म कांची, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें।

0: सुल्तान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में शब्दकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

गुरु रंधावा की आवाज में ये गाना आप सुन रहे थे, फिल्म थी हिंदी मीडियम। आज जानी मानी फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। प्रियंका चोपड़ा को देते हैं हम ढेर सारी बधाइयां पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। फिल्म है क्रिश 3, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, समीर अंजान के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है जी। जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आज जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है। साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड की सफल फिल्मों से लेकर हॉलीवुड के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स तक उन्होंने हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अभिनय के साथ साथ वे एक सफल निर्माता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। शिक्षा, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर भी वे सक्रिय भागीदारी देती हैं समय समय पर। प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये विश्वास भी दिलाती है कि आपके इरादे अगर मजबूत हैं, मेहनती हैं आप, तो मंजिल आप जल्द पा सकते हैं। चलिए उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं। ये फिल्म मेरी कॉम, अरिजीत सिंह की आवाज है, संदीप सिंह के बोल हैं, शिवम का संगीत।

0: The Sky is Pink इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में. रचना थी गुलजार की, संगीतकार प्रीतम.
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर.
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला. सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा. मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह. तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया.
2: एक और आ गया.
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा.
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के. 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
6: सुनिए

0: तुम बिंटू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आर्को और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर के बोल थे।
1: कृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
2: जल ही जीवन है, ये कहावत तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसे सही मायने में समझकर और इसके लिए काफी अच्छा काम किया है आज की हमारी इस शख्सियत ने, जिनसे कि हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैं हूँ आरजी नीति और हमारे आज के जो गेस्ट हैं, इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रामवीर जी, आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
3: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th के लास्ट तक अपने गांव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाते थे तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था, मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हैं। वही नहर है, मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूं, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गांव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिले तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गांव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गांव से और

0: स्थिति क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे पंप, सबके घर में समर सर्विल पंप है, एक गिलास पानी की जरूरत है तो वो 1000 लीटर पानी निकालेंगे, छोटे बच्चे को नहाना है तो उसको बाल्टी नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है, सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है वो, पूरे परिवार की इनकम 10000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए, हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ, तो कुछ बच्चे हट गए कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे, गांव की जो चौपाल बनी हुई है चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके डीएम में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ, हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है, जिस काम के लिए खुद डीएम साहब कलेक्टर साहब आपके गाँव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गाँव देखा ही नहीं हमारा और उनको पता चला। देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ, और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूँ। वहां से निकल के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते हो। साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी, तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे, हमसे यार पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो 0 एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ तो ये कैसे करोगे, तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना, हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया, अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती, लेकिन हम तो दो ही लोग थे। और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे, कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा, वो उधर भी करके जाना है, हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: अच्छा, तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए, हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं कि हम बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है, आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब 2 चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाके नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने

0: आपको खाली किया तो एक से डेढ़ मीटर की हमें लेयर मिली और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है उसमें सब कुछ है उसमें जूते हैं उसमें चप्पल है उसमें कांच है घर का बचा हुआ सामान है बहुत सारी मूर्तियां हैं तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सिलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले जो नीचे फंस गए थे पानी में डूब गए थे वापस ऐसे पड़े हुए मिले बहुत दुख लगा उनको देख के हमें क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है भैंस चोरी नहीं हुई थी भैंस डूब के मर गई थी तालाब में
1: जब आप कचरा उठाते हैं आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से
0: देखिए उसके लिए तो सेफ्टी टूल्स होते हैं एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं वहां पर प्रॉपर मास्क और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है वो बहुत मोटी होती है प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है सेफ्टी किट होती है तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है तो वो भी आपके टच में नहीं आता है और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते क्योंकि मैं क्या करूंगा एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा बात तो एक ही हुई तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ
1: तक
0: उसको लेके जी जी तो लेकिन अभी क्या है टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का निस्तारित करने का उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट है इनऑर्गेनिक वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है स्लज ले लेता है इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे हमने क्या है कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है वो प्लास्टिक उनको देते हैं उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच ट्री गार्ड मेज उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस से ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारें
1: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं उनकी सफाई करते हैं तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं क्या रिएक्शन
0: देखो लोकल दोनों तरह के ही है जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का आप कहीं भी जाके देखिए तालाबों को उन लोगों ने कब्जाया हुआ है जो तालाब के किनारे पे रहते हैं क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई पर्यावरण बच रहा है आसपास का माहौल ठंडा होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है डायरेक्टली नहीं मिल रहा है डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से जब उसमें नहाते थे जब उसमें से मटका भर के लाते थे तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं वो सपोर्ट भी करते हैं लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा हैं इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है दूसरा जो अलग अलग टाइप के लोग मिले कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया शाम तक आ जाएंगे पहले बताइए पैसा कहाँ से मिला क्यों कर रहे हो वो सारे लोग हैं कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे हैं इसलिए हम उसको पार्ट बनाते और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं बहुत सपोर्ट भी करते हैं बहुत विरोध भी करते हैं
1: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी उसको पुनर्जीवन मिल गया तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है
0: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं या मेरा खुद का खेत है या मेरा खुद का प्लॉट है हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है या जो ओनर है उस जगह का तालाबों के साथ इश्यू क्या

0: है, तालाबों का कोई ओनर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बताए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है, तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है, तालाबों से। मछली कहाँ से आती है, तालाबों से। और आजकल ये बिहार में तो मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी। और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पर खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब को रिस्टोर कर दिया और अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए, मैं कितनी बार जाता हूं, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं। तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
1: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, एक जनजीवन वहां पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
0: हम क्या है, हमारे एक यूएसपी है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आइलैंड बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं। उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का वो ये है, क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से 100 साल पहले एक तालाब जिसमें इंसान भी उतना ही डिपेंड था उस तालाब पे और एक पक्षी भी उतना ही डिपेंड था। इंसान के पास तो पानी आ गया, पाइपलाइन से आ गया, RO से आ गया, रिमोट से आ गया, लेकिन उसके लिए तो आज भी उतना ही रिलेवेंट है वो तालाब। तो जैसे ही मेरी पूर्ति हुई, जैसे ही मेरी जरूरत खत्म हुई, अब मैं तालाब को पाट दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, अब मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ? नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पर उतना ही डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गया, पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आइलैंड और अगले साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल सक, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। अब सोचिए अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब पे जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे। तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11th क्लास में एडमिशन लिया और मैं कॉलेज गया पहली बार और जिसने पहली बार MNC में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज
1: पढ़ा लिखा और MNC में जॉब
0: कर। जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ फिर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे।

0: प्राउड फील कर रहे थे।
1: घर वालों को उम्मीद थी, और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूं। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था।
2: अच्छा।
1: और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था,
2: तो क्या बताया,
1: ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
2: अच्छा।
1: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहां जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
2: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दो। जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल दो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गांव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे हमारे। लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ये है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है।
2: तो ऑब्वियसली लगता है कि बेटा
1: जो है छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थी, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देकर आया हूं तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, पेज फाड़ लेता था और बोलता था तुम ले जाओ इसको, तो बिचारी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद ही आ जाते थे, आप तो तुम्हारे लड़के का
2: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात में पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
1: नहीं मैं तो सुन नहीं पाया था, उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया, और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो, अरे नहीं अंकल अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
2: अच्छा।
1: और बार बार बज रहा था, मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे क्या ये ऐसा काम करते हो, ये करते हो,
2: वही लोग,
1: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आप कौन हो मजाक उड़ाने वाले।
2: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
1: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है, उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा सिर्फ हम टीवी में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
2: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
1: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी तो हमारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए, तो मैं इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
2: अच्छा।
1: इससे मछली पालन करेंगे और करोड़ों रुपए कमाऊंगा। तो उस बात से खुश हो जाते थे, अच्छा मछली पालन का काम करना है। मैंने कहा हाँ जी मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए, तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो ही सैड की ठीक है भाई मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
2: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
1: नहीं मेरे साथ के करते हैं ना।
2: अच्छा।
1: मैंने मछली पालन कराया अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है, अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही भर जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंड सेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज से कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है धीरे धीरे, धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ, अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ स्कूल में जाता हूँ बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे, दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो सब झूठ है, अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं। अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
2: अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
1: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
2: अच्छा,
1: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं छोटे छोटे है क्या। जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुंदर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है, बड़ा तालाब, उससे थोड़ा छोटा होता था छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करी तो वो भी तालाब ही है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
2: अच्छा।
1: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पांडिचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
2: आने वाले समय में किस किस जगह को कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
1: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
2: अच्छा।
1: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गांव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गांव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूं अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूं।
2: अच्छा।
1: तो हमारी टीम जाती है उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
2: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
1: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक की बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गांव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहां से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गांव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना ही करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहां पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
2: जैसे लेरे, जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहे सफाई के या रिवाइव करने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं?
1: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं बच्चों को बोलता हूँ अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ
2: कर लिया, बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
1: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकाले, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे। इसके अलावा अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते। छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए तो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
2: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाए ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाश।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आर डी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम। गीत
3: वाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले के चिट्ठी आलेख सुरभि तिवारी वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राष्ट्रपति ने लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने जिले की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिक्षा शोध और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ग्वारीघाट पहुंचकर मां नर्मदा की आरती में भी शामिल हुई। वहीं रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। समारोह में वीरांगना को श्रद्धांजलि और सशस्त्र सलामी दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल शुरू किया है। इसे पुलिस अदालत जेल और फॉरेंसिक विभाग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। साथ ही प्रथम नाम की एआई प्रणाली भी शुरू की गई है, जो मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और मंत्री राकेश सिंह ने निर्माणाधीन रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। करीब 7 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मैं जल्द ही जबलपुर से कोलकाता के बीच सप्ताह में 3 दिन सीधी उड़ान शुरू होने की तैयारी है। इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फायदा मिलेगा। इसी बीच जबलपुर के मटर और सिंघाड़ा को जीआई टैग मिला है। इससे इन उत्पादों की अलग पहचान बनेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी जबलपुर को बड़ी उपलब्धि मिली है। वीन वुमेन की सेफ सिटीज परियोजना के लिए देश में सिर्फ जबलपुर का चयन हुआ है। इस योजना से महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान और सुरक्षित बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान भी शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब बात स्थानीय निकायों की। राज्य वित्त आयोग की समीक्षा बैठक में पंचायतों और नगर निकायों की आय बढ़ाने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और सौर ऊर्जा विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की गई, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सके। शिक्षा और पर्यावरण की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से आकर जबलपुर में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए प्रदेश का वैध मेडिकल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस को ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.2 अभियान जारी है। स्कूलों में विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने और जरूरत पड़ने पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी का ऑपरेशन हमदर्द भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर रहने वाले निराश्रित लोगों की पहचान कर उन्हें परिवारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब कृषि की खबर। कृषि विभाग की टीम ने प्राकृतिक खेती और खरीफ फसलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। किसानों को बेहतर बीज, संतुलित उर्वरक और कम पानी वाली फसलों की जानकारी दी गई। विज्ञान और उद्यमिता से जुड़ी दो अच्छी खबरें भी हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग हुआ। वहीं महिला उद्यमिता और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ। मौसम की बात करें तो जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। खरीफ फसलों की बुआई को फायदा हुआ है। बरगी बांध में पानी की आवक अभी धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार की नई कहानी लिखी है। जबलपुर के अभिषेक भावे ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से मिले ऋण से अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खड़ा किया। आज की तारीख में उनका टर्नओवर सालाना 15 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं जबलपुर की ही शैल पटेल ने आजीविका मिशन से मिली मदद से चाय नाश्ते की दुकान शुरू की, जो पति के निधन के बाद उनके परिवार का सहारा बनी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंक सखियों की बदौलत अब गांव में ही बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। परखेड़ी गांव की क्षमा ठाकुर जैसी बैंक सखिया बायोमेट्रिक मशीन से लोगों को नकदी निकासी और जमा जैसी सेवाएं दे रही है। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
4: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लौट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई और फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, चार पांच तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। विज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन विज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने विज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। विज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और विज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और विज्जू कूद जाता। विज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से विज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजय को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाश नाश के काम किया विजू ने शादी में। विजू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विजू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया शादी के बाद। विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पटती नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था। फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला और उससे भी बड़ी बात उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है चुप्पी साथ।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी, और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा। सब कुछ

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह। कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की याद का दिन और आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गाने भूपी जी की आवाज में।

हसन कमाल के बोल थे, फिल्म का नाम था एतबार, आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थी। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज थी, फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठ

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैटिनी शो में हमारे साथ एक बहुत जरूरी मेहमान हैं शुभजीत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपकी जो टी शर्ट है उस पर लिखा है जल है तो कल है।
1: जी।
0: अब चूंकि हम रेडियो में बैठे हैं तो मुझे एक दृश्य खींचना होगा ना कि लोगों को पता चले। और आप पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे आप कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी, रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़े समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं,
0: बिल्कुल
1: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैं ये रियलाइज़ किया हूँ कि हर चीज़ पानी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि पानी नहीं था इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हर काम अच्छे से होता है, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पानी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियां किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
0: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
1: ये कब शुरू की थी बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा।
0: अच्छा।
1: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए
0: क्या बात
1: 5 सालों में। लेकिन 5 सालों में, 2010 से शुरू किया था, 2015 तक 80,000 पेड़, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि कोई बोले कि वाकई यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं। बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
0: जी जी
1: चाहे एक किसान हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जैसे लोग पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
0: वाह।
1: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज पर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यही है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
0: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया,
1: जी,
0: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या हैं इसकी?
1: उपलब्धियां तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है।
0: जी जी
1: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो या पेड़ पौधे में देना हो या टॉयलेट धोना हो या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को लेके मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया, एंड थैंक यू उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे, एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता और ये फ्री फॉर ऑल है।
0: अच्छा,
1: हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए, उसको नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नहा रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था, एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी ज़रूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया, ये देखिए ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स, और उन्होंने सारे तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो, क्योंकि सोच यही है कि एक, अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य ईजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए। मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूँगा कि 2 महीना चले काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग इसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूँगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे, एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का। अच्छा। यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ, एंड उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहाँ लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूँ कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल हो गया है हम सब के लिए, एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
0: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कॉन्टेक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो ही एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
1: जी, पहला तो ये है, RWH इंडिया हेल्पलाइन जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग ज़मीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज़ कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है। यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं, ईमेल कीजिए हमें। waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्योंकि हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है। कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास, न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में। क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं। यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गाँव में पानी की कमी होती है और सेम गाँव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि यही सेम गांव, सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौकर ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश ये है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में, हर शहर में। कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्लास 8 भी पढ़ा हो, क्लास 5 भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए। लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का ज़मीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेस हैं। देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए। एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
0: 7,500 लोग तकरीबन आपसे,
1: 7,400 लोग
0: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर।
0: अच्छा,
1: मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहाँ फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
0: अच्छा, वो भी,
1: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासिटामोल दे रहा हूँ लोगों को। हर चीज में बोलता हूँ पैरासिटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
0: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
1: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज़ किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग, कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस किस आइडियाज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस में क्या फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस में फ़ायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ।
0: यही तो जन भागीदारी है।
1: बस जन भागीदारी का मतलब ही है DIY। ये आज मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन भागीदारी मतलब DIY। हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हर चीज। क्यों, जब मैं बोलता हूँ ना, आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए तो उनको DIY किट मिल जाता है। उससे उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है हमारे इंजीनियर्स का, लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं। एंड एक इंजीनियर के पास 1000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक आपको खूबसूरत बात बोलूंगा, इस समय पर 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में।
0: अच्छा।
1: क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग हैं सिर्फ गुजराती बोलते हैं, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी, नहीं 7 सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग और जुड़े हमसे। एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूँ, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई, वो मराठी में लोगों को समझाती है, तो एक अच्छा चल रहा है। एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
0: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं?
1: देखिए, एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूँ, इसका हिंदी वर्ड एक कहावत है ऐसा कुछ, कि अगर आप समय पे चीज़ का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
1: तो कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है, तो एक छोटा सा उपाय, जल तारा, एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
0: समय रहते ही ये उपाय कर लेना।
1: समय रहते ही
0: जी,
1: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता पूरा गांव डूब गया, क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
0: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
1: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे सामने बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं
0: जी।
1: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है वो सीधा बह के नीचे वाला जो सबसे जो लो लाइन एरिया है वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
0: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा,
1: बस,
0: और बाढ़ की समस्या नहीं होगी,
1: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा।
0: जी,
1: क्योंकि बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे, हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया, क्यों, क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया, 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200 300 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं, अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे, वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है कि उस समय जो सिचुएशन होगा हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
0: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है
1: जी। इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण,
0: गर्मी बढ़ गई है।
1: गर्मी बढ़ गई, हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा
0: जी,
1: अभी
0: 23 ऊपर हो गया।
1: बिल्कुल, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत जरूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय, तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
0: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
1: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
0: जरूर
1: अपने हिस्से का पानी बचाइए बस। दूसरे का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब।
0: तो सब अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले आएगी।
1: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्युनिसिपैलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सब का, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
0: हमें बचाना है। तो चलते चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
1: बिल्कुल, 2-3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में, अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू
0: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
1: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है
0: जी,
1: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा गा दूं आपके
0: जरूर,
1: सामने।
0: जरूर जरूर, स्वागत।
1: हरी हरी वो सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
0: वाह वाह,
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
0: क्या बात है, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत।
1: अरे वाह,
0: सुनते हैं गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की।
2: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
3: वो तेरे प्यार का।
2: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सुहाना।
2: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
2: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
2: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: ती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: एयरस्पेस ने बनाया है विक्रम एक का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: गोकी ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए। एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
4: एक और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल।
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुन।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: आती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है धड़कन, किशोर कुमार की आवाज़।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं सुरीले सफर कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और उसके जरिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं और हमारी और आपकी होती हैं बातें और तय होता है कार्यक्रम का एक सफर। आज की इबारत या आज का टेक्स्ट ये है, कभी कभी किया है ऐसे कि बहुत सोचा ये कहना है वो कहेंगे पर जब कहने का मौका आया तो कुछ नहीं कहते बना, या ये लगा कि छोड़ो अब क्या कहना है। कभी प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत की, कुछ तो दिल ने कहा होगा। अपने दिल की बात सुनो, दिल कहता है कह दूं तो बोलो बोलो, नजाकत से कहूं तो चुप रहिए, नजाकत से कहूं तो चुप न रहिए, बोलिए दिल की बातें। तो भाई ये था आज का टेक्स्ट, या ये कहूं कि ये है आज का टेक्स्ट। और बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हमें मिले हैं और कई श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि आज के गाने कौन से हो सकते हैं, आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, ये एक श्रोता का कमेंट है, एक श्रोता लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले राजेश खन्ना को आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखती हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है कुछ कहना चाहो पर बातें मन में रहकर मुंह से नहीं निकल पाती, शायद सुनकर किसी को दुख ना पहुंच जाए, कभी किसी के सम्मान को चोट ना लग जाए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने मन की उस लाचारी को नहीं भूल सकता जब सब कुछ सामने था पर फिर भी मुट्ठी से फिसल गया, वो एक पल की हिचक उम्र भर का सन्नाटा बन गई। आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि सबसे भारी बोझ उन शब्दों का होता है जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाते। बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं हमारे श्रोता। एक और श्रोता का ये कमेंट है, बहुत कुछ सोचा था कहने को पर लफ्जों ने जब मोड़ लिया, दिल की बात दिल में ही रह गई या हमने कहना छोड़ दिया। कभी लिखे थे जो खत पन्नों पर वो स्याही आज भी कुछ कहती है, नजाकत से सुनो दिल की धड़कनें जो अनकही बात अब भी बहती है। खामोशियों के इस मेले में अब खुद से ही कुछ सवाल कीजिए, जो दिल कहे वो सच बयां कर दीजिए, डरिए मत बस आज कुछ बोलिए। ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करना है तो चलिए ये रहा आज का पहला गाना। और अमूमन हमारे इस कार्यक्रम में हम गानों से जुड़े सवाल करते हैं लेकिन आज क्यों ना बातें करें। हमें बताइए कि कब जिंदगी में ऐसा मौका आया जब कुछ कहना था और कहते नहीं बना, किस किस की जिंदगी में ऐसा मौका आया था। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, सुरीला सफर वाली पोस्ट पर लिख दीजिए ये बात। इस गाने के बाद आप सभी की बातें शामिल करते हैं, कैसे आप अपनी बात नहीं कह पाए या कैसे आपने संकोच छोड़ा और अपनी बात कह दी, दोनों ही बातें लिखी है।

वही पड़ोसन फिल्म का ये गाना एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया। और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बानो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती, पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया।

खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था क्योंकि वो जमाना ऐसा था जवाब भी आया करता था और ये खत हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं जिंदगी में हर रोज न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और

निकलवाएंगे। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे कहा भी पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नजरें, संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है, शादी के बाद जब मायके जाती है तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूंगी वो कहूंगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को, ये जरा क्लियर कीजिएगा। अभी संभाले हुए कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए, अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने।

0: एक श्रोता बड़े अफसोस से कह रहे हैं,
1: क्या बताएं यूनुस जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला, आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था, बहुत बढ़िया बात है। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे जमाने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स, एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहां बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद है। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: पी है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: भई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सएप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखती हैं कि डाकिए का इंतजार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा

कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है, लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है। कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें इमोजी नहीं पसंद है, फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं? चिट्ठी हमें अपनी चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं? और दूसरी बात, क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है? ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं, आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घोप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं, 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भेज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी और इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है, भाई शॉर्टकट का जमाना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहां हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थी, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन एन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़ ये जो

मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है। ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें, तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते, पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो, और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़ झाला भी आपने किया है तो बताइए।

जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना जरूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

यही था फिल्म दिल तो पागल है, इस फिल्म से जिसके लिए आवाज थी लता मंगेशकर, उदित नारायण की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था उत्तम सिंह का।

0: इस गीत के साथ ही सुगम फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ

0: दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की इस नीति को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पतखेड़ा में 2,38,00,000 रुपए की लागत से निर्मित नवीन विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली की सुविधा मिलेगी। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रतिनिधियों को मूल्यांकन मानदंड, गुणवत्ता मानकों और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इससे संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रक्रिया यानी नैक के लिए बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। आज भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में शामिल शिवपुरी रेलवे स्टेशन का लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प होने से क्षेत्र के यात्रियों को अब नया और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। बुरहानपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अब उन लोगों तक पहुंच रही है जो बीमारी से अनजान है या लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून, सुरगांव, निपानी और पिपल्या तहार का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुपालक संगोष्ठी और पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से
1: सुनिए। समाचार दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी

0: प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
0: in space और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे newsonair और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के

0: ने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
0: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
0: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन

0: उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप विविध भारती के संग हैं। सदाबहार नगमे।

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार
0: का। 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मुजाहिद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल थी फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज की बोल।

मुजाहिद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानु दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहलापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोटा रोडा कोलासी गजानन कुंभार पद्मावती विशाल ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ लक्ष्मण भाऊ भारत शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फो नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है?
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा गुड़िया आजो बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: सब लोग
0: वाओ रायता माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा।
2: गुड़िया लॉकडाउन में खाना मिल रहा है शुक्र मनाओ।
3: वाह ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा
2: आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ। बेटा
4: वाह वाह वाह वा, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
2: जी हाँ वो तो है।
4: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा शुरू बस करिए, है नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले रही
3: हैं। अरे बहू हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया ये गुड़िया तू ये बता तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है ना कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
0: और नहीं तो क्या, भूरी की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा, कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ, सुना सुना सुना।
0: हाँ, तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना, वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन

0: लगता है वही आपका उजला फरिश्ता।
1: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
1: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
1: अच्छा,
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
2: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था। मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
1: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
2: गुड़िया, याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
0: हाँ।
2: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
3: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
2: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।

0: पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
1: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
0: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले।
1: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा, उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ।
1: क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
0: हाँ, हाँ, हाँ,
2: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा, पापा, पापा!
2: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ
3: पापा,
2: तो
3: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। I think he is lost.
2: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, we must do something.
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा
0: ठीक कह रहे हैं,
3: कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
2: अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
2: हाँ।
0: और लेकिन रुके ऐसा करती हूँ, मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया। ठीक है, ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेना है।
0: भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
2: हाँ चल चल चल,
0: मतलब डरोगी नहीं, ये क्या है
3: मम्मा, प्लीज।
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना। ठीक
0: है, ठीक है, ध्यान रखना अपना। तो
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
1: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया,
5: हाँ मम्मा,
0: तुम लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं।
3: अरे मम्मा, उड़कर थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है, मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों भला?
3: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
3: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ, मैं यही हूँ।
3: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखे जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा,
6: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
6: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
6: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त, उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
6: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
6: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
6: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
6: हाँ हाँ, देख देख,
0: ठीक है,
6: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ, मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो, मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
6: हाँ बहू, एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा, ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ, ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिला।
3: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
0: हाँ?
3: हम जो कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
6: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: अब पर अम्मा रोटी सुन के तो पीछे हट गया।
6: अरे डर रहा होगा ना शायद।
3: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है।
0: पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
2: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, तुम लोग आसमान में टंगे हो।
3: आसमान नहीं, स्वर्ग में बैठे हैं।
6: बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
2: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
2: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना, उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों। 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
2: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
0: जी।
2: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना चपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा। रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
2: कह तो रहा हूँ जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, अब गुड़िया को फोन दीजिए।
6: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
3: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस। लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे साइकिल रिक्शा पे किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
0: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
0: अच्छा
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी एक अंकल थे बूढ़े से नंगे पैर मम्मा।
0: अच्छा
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
0: अच्छा
3: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
0: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
0: क्या
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
0: अच्छा
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
0: हैं? हाँ हाँ सच में नंगे पैर ही है। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
6: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
6: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
6: कोई बात नहीं कोई बात।
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो
2: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ।
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
2: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बच्चा रहने की इच्छा का परम रूप चरम रूप जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ न सरकार न अमीर न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
0: ये कौन लोग हैं?
2: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
0: आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है और वो भी जाते हुए।
2: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
0: हाँ।
2: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
0: क्या?
2: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
3: सच पापा बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
6: क्या
1: गूज हो जाते हैं, क्या बक रही है?
2: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
1: हाँ हाँ पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
6: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
1: अरे
6: मर
1: नहीं
6: जाएगा।
1: दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
6: हाँ तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
1: सच्ची, और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
6: हाँ,
1: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
6: हाँ।
1: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है, पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है, और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
5: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी भाई।
2: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
5: बिल्कुल।
2: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
5: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है, और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी।
5: बस बस बस शुरू हो गया, ये इनको मौका मिला गुड़िया, और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो, और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
1: क्या मम्मी पापा आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
7: गुड़िया,
1: अरे आप जाग रही हैं?
7: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
1: इज इट? क्या बात है,
7: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
1: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का, और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली, और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह, मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
7: बिल्कुल खुश।
1: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
7: हाँ बेटा जरूर आएगी।
1: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
1: हाँ।
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
1: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
1: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
8: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
1: क्या बात है।
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
1: इज इट
2: बंगाली संदेश?
1: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
1: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और ध्येय अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी। निर्देशक अमरकांत दुबे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन के दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
2: को मिलाया है।
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
2: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही है फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
2: जी।
3: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है, और जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं।
2: सबसे बड़ा संदेश,
3: सबसे बड़ा जी।
2: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी ये फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
3: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था, पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
2: जन जन तक पहुंची है
3: OTT की मेहरबानी से।
2: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे, और
3: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
2: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी है,
3: मार्केटिंग के लिए जी।
2: जी, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
3: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है. ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए. और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
2: जी.
3: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है. और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
2: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
3: बिल्कुल नहीं. और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आस पास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है.
2: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर
3: जरूर
2: आगे बढ़ाते हैं.
3: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
2: आइए सुनते हैं. बहुत ही सुंदर गीत.

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा जी। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह के जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि

0: मैं भी एक स्त्री हूँ
1: जी
0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे, उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो
1: जी
0: पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का, ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जी जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को
0: जी
1: जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं, तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुँच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियाँ हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएँ हैं, अलग अलग समस्याएँ, ढेर सारी समस्याएँ। तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में
1: नहीं
0: नहीं हूं,
1: हूं।
0: मैं उसके विरोध में नहीं हूं,
1: जी जी
0: क्योंकि संसार दोनों से चलता
1: जी
0: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है, तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: है आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं, देखिए आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है।

0: जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
1: बिल्कुल
0: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिप्रेक्ष्य में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए।
1: जी
0: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
0: जी,
1: है,
0: दोनों के लिए
1: जैसे
0: गलत
1: ही
0: है। तो
1: है।
0: स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए,
1: जी
0: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो,
1: फ्री
0: ये
1: हो,
0: होना
1: वहां उसे
0: चाहिए।
1: स्वतंत्रता मिलनी
0: जी
1: चाहिए,
0: जी
1: अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी
0: जी
1: को किस ओर ले जाना है सही तरीके
0: जी
1: से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहाँ तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आड़े आता
0: देखिए,
1: है?
0: समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है। अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है, या ये कर रही है, वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके, और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो अब पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है ये, तो पुरी साहब करेंगे? पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1,000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है,
1: जी
0: आपको हीरो मानता है वो, या हीरोइन मानता है। आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं।
1: बिल्कुल
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती है।
0: जी
1: जी बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जाने वालों जरा

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआत की, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बेचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाए, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी।
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर्स थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी, लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है। परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करे वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या? उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनकी
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
1: निर्देशक
0: है,
1: कितना स्ट्रॉन्ग है अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
1: बहुत अच्छी,
0: बहुत ही संचिता कलाकार है
1: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं
0: जी,
1: गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
0: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
1: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
0: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
1: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं।
0: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पूरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी,
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माताजी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुख

0: ठीक होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे,
1: जी
0: उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
1: जी
0: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
1: जी
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं वो, उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई,
1: जी
0: भुखमरी आ गई है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
0: जी
1: किताब रही ये,
0: जी
1: यूं
0: जी
1: गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हमने
0: साहित्य
1: आपको
0: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में लिया है।
1: शामिल किया,
0: जी
1: और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या-क्या हैं बस ये जानना चाहते हैं
1: जी वो फिल्म बना रही हूं दो सीरियल का है वो कर रही हूं एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी एक जगह है जहां पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती है कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है और नदी कैसे पार करनी पड़ती है टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती है
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूं अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूं कि मैं जितना भी काम करूं मेरी जो महिलाएं हैं मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूं
0: जी बिल्कुल बिल्कुल तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर बतौर निर्देशक बतौर एक्टर
1: देखिए कोई भी विधा जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे मैं इसके खिलाफ हूँ एक तो जो कलाकार आता है जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी
1: ठीक है आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बात जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे
0: हाँ,
1: नहीं
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते ग्लैमर और पैसा तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे लेकिन आप कलाकार हैं आप पढ़ते हैं आपने सिनेमा पढ़ा होता है थिएटर पढ़ा होता है आपने लिटरेचर पढ़ा होता है म्यूजिक पढ़ा होता है ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है इसी तरह कलाकार को कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है तभी जाके आप कुछ बनेंगे
0: बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
1: नहीं विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का
1: जी एक गाना मजरू साहब का है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से LP का म्यूजिक है न जा अब कहीं न जा
0: दिल के सिवा
1: दिल के सिवा
0: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। हर एक ख्वाब में बसती है तेरी नजर, मेरे हर ख्याल को छूती है तेरी नजर। दिल भी अजीब है मानता ही नहीं, कितनी बार समझाया फिर ढूंढे तेरी नजर। वो लफ्ज क्या कहें जो जुबां तक ना आए, सब राज बयां करती है तेरी नजर। मैं खो गई हूं जैसे किसी गहरे समंदर में, जब से मुझ पर ठहरी है तेरी नजर।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपोलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभा से प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं, बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

बंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, हुई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे, यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही नजर हो जैसे।

पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश सी एक मीठी सी बात हुई। एक पल ठहरी जो आंखें हैं तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नज़र क्या मिली रूह में बरसात हुई। तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नज़र शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते। और कभी वही नज़र इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है, बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।

दिल की नजर से तेरा ही नूर दिखता है, हर एक ख्वाब में बस तेरा सुरूर दिखता है। तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है। तेरी आंखों की गहराई में डूब कर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

नजर, निगाहें, आंखें बस जज्बात बयां करती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ देती हैं। निगाहें वो कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती और निगाहें निगाहों की बातों को कह देती हैं। आज के कार्यक्रम छाया गीत में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
2: बदलो बदलो आदत बदलो
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
2: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें
2: फिल्म संगीत का आनंद अभी आप उठा रहे थे श्रोताओं अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम लोक संगीत में जाने का क्योंकि शाम के 6 बजने वाले हैं तो आइए चलते हैं कार्यक्रम लोक संगीत में

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चला इहके दरबार में नाचा दिखा दे रे सुनरिया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम संध्या वंदन का।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं,

0: हजार रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर शून्य जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूप को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे निमा गागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन यूफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉक ओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून दिल की आरती
5: सुरीली संदली।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में। मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से। केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित निवास में आयोजित बैठक में कल 19 जुलाई को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए जाने वाले विधेयक प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पथखेड़ा में 2,38,00,000 रुपए की लागत से निर्मित नवीन विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिलेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि जिस चंदेरी और मुंगावली में कभी 1 या 2 विद्युत सब स्टेशन होते थे, वहां आज 15 सब स्टेशन है।
1: मेघुनावाड़ा से अमरोहा की सड़क और उसी के साथ मेघुनावाड़ा से रसूला बदर का 10 करोड़ का पुल भी मैंने आप लोगों के बना दिया। मड़ी में रिंग रोड बन गई, घटावदा में बन गई। और सब स्टेशनों की तो हम बात करें तो जिस चंदेरी और जिस मुंगावली में 1 या 2 सब स्टेशन होते थे, आज उसी चंदेरी और मुंगावली में 15 सब स्टेशन मैंने आप लोगों के लिए स्थापित कर दिए।
0: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जबलपुर पुलिस ने इस अभियान के तहत आज स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक गुरु एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा। पालक शिक्षक बैठक होगी। इसके साथ ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का सम्मान होगा। वहीं स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। 29 जुलाई को समापन

0: समारोह में विजेताओं और 90% से अधिक परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। आज नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इसके साथ ही भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है।
2: Congratulations in space for facilitating
3: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 4 प्रमुख विषयों पर आधारित होगी जिनमें वित्तीय संघवाद और सुशासन, कौशल विकास, रोजगार और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण शामिल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। श्रीकांत ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं यामी गौतम ने फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। ममूटी और कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार साझा किया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वन क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रायसेन वन परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सांची विधायक ने सिंगल क्लिक के जरिए योजना के 305 पात्र हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर नर्मदापुरम में जिला न्यायाधीश ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार पॉक्सो एक्ट श्रम कानून के साथ जरूरी जानकारियां प्रदान की। शिवपुरी जिला अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रदेश में

पुलिस ने नशे से दूरी अभियान के तहत स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में। मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से। केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत केंद्र का किया लोकार्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं कुछ संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
5: देश की सुरीली धड़कन
6: विविध भारती,
4: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
5: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
4: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
5: वीर सैनिकों की जय माला
4: और हंसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
5: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
7: सखी सहेली,
5: बॉम्बे टॉकीज और
8: सेल्यूलॉइड के सितारे,
5: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
5: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून दिल की आरती
5: सुरीली संदली।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
9: आकाशवाणी at 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन

0: स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। आज हम दो प्रकार के सोने की बात करेंगे, सोना यानी कि गोल्ड। एक कृषि में ग्रीन गोल्ड होता है यानी कि हरा सोना, और एक और सोना होता है काला सोना। तो पहले हम हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम काला सोना के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन गोल्ड। किसान भाई और बहनों, ग्रीन गोल्ड जो होता है हरा सोना, ये है सहजन यानी मोरिंगा ओलिफेरा, इसे हम मुनगा भी कहते हैं। पूरे विश्व भर में इसे मिरेकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पोषण, औषधीय गुणों और पर्यावरणीय लाभों का अद्वितीय संगम है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न ये बहु उपयोगी वृक्ष आप सभी भली भांति जानते हैं, और ये आज वैश्विक स्तर पर सुपर फूड के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। इसकी पत्तियां, फलियां, फूल और बीज उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आवश्यक अमीनो अम्ल, विटामिन ए, सी और ई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और साथ ही साथ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये मानव स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मोरिंगा यानी मुनगा केवल एक पौष्टिक सब्जी ही नहीं, बल्कि एक प्रभावी कार्यात्मक खाद्य यानी कि फंक्शनल फूड है। ये एक प्राकृतिक स्वास्थ्य संवर्धक भी है। इसमें उपस्थित फ्लेवोनाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड यानी फिनोलिक यौगिक, क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक अम्ल और आइसोथायोसाइनेट्स जैसे जैव सक्रिय तत्व इसे सूजन रोधी, जीवाणु रोधी, एंटी ऑक्सीडेंट, मधुमेह रोधी और हृदय स्वास्थ्य वर्धक गुण प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये प्रमाणित हुआ है कि मुनगा यानी मोरिंगा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने, रक्त शर्करा और रक्तचाप को नियंत्रित करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो मोरिंगा यानी कि मुनगा यानी कि सहजन एक अत्यंत लाभकारी और जलवायु अनुकूल फसल है। इसकी सूखा सहिष्णु प्रवृत्ति, कम जल की आवश्यकता और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अनुकूलन क्षमता इसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए आय वर्धन का उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 50 से 100 टन तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसानों को उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। मोरिंगा का महत्व केवल पोषण और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसकी गहरी जड़ प्रणाली मिट्टी के अपरदन यानी कि मिट्टी का जो क्षय होता है उसको रोकती है, भूमि की उर्वरता में सुधार करती है और कार्बन अवशोषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता करती है। यही कारण है कि इसे सतत कृषि, वनीकरण और भूमि पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में विशेष महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में खाद्य और पोषण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली जनित रोगों जैसे वैश्विक चुनौतियों के समाधान में मुनगा एक संभावनाशील प्राकृतिक संसाधन के रूप में उभर रहा है। इसके पोषणात्मक, औषधीय और आर्थिक गुणों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सहजन यानी कि मुनगा केवल एक फसल नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज, समृद्ध किसान और टिकाऊ प्रणाली की दिशा में एक सशक्त कदम है। भविष्य में वैज्ञानिक अनुसंधान, मूल्य संवर्धन और प्रभावी विपणन के माध्यम से मुनगा यानी सहजन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसान भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे सोना की, तो हरा सोना तो हो चुका, अब बात करते हैं काला सोना। अब ये काला सोना क्या है इसके बारे में जानते हैं। भारत का काला सोना है भैंस। भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है और इस उपलब्धि में भैंसों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय भैंसों को प्रायः काला सोना, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वे देश के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग आधे से अधिक का योगदान देती हैं और क्योंकि वे देश के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग आधे से अधिक का योगदान देती हैं और उच्च गुणवत्ता वाले दूध का प्रमुख स्रोत है। मुर्रा जाफराबादी महसाना भदावरी और नीली रावी जैसे भारतीय भैंस की नस्लें विश्व भर में अपनी उत्पादक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि भैंस भारतीय दुग्ध अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी पशुपालन विकास कार्यक्रमों अनुसंधान निवेश और जन जागरूकता में इसे अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में भैंसों के संरक्षण संवर्धन और वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भैंसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जैसा कि आप देख ही रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। सीमांत और लघु कृषकों के लिए भैंस नियमित आय का प्रमुख स्रोत है। भैंसों की उच्च दुग्ध वसा के कारण दूध घी मक्खन पनीर खोया और मिठाई उद्योग को महत्वपूर्ण कच्चा माल इसी से प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भैंस पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कम संख्या में पशु रखकर भी किसान अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। भैंस के दूध में सामान्य रूप से देखा जाए तो वसा यानी कि फैट प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस कुल ठोस पदार्थ सॉलिड जो है ज्यादा होते हैं। भैंस के दूध का स्वाद और गाढ़ापन उपभोक्ताओं द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। घी और दुग्ध उत्पादों की रिकवरी भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है। भारत में पाली जाने वाली अधिकांश भैंसों का दूध दो प्रकार के बीटा कैसीन प्रोटीन से युक्त माना जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक उपभोक्ताओं में इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। भैंस के दूध में जो है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी होती है। भैंसों को सामान्यतः कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील माना जाता है। अनेक संक्रामक और चयापचय संबंधी रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत बेहतर देखी गई है। भैंसे निम्न गुणवत्ता वाले चारे का प्रभावी उपयोग भी कर सकती हैं, जिससे सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए उनका पालन लाभकारी सिद्ध होता है। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन प्रणालियों में तीव्र परिवर्तन, नगरीकरण, चारागाहों की कमी और विभिन्न प्रकार के आर्थिक कारणों के कारण भैंस पालन अनेक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर भैंसों की संख्या में निरंतर कमी आती है तो इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले भैंस दूध की उपलब्धता में कमी आ सकती है, घी पनीर खोया जैसे दूध उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है, किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही देशी भैंस नस्लों की आनुवंशिक विविधता का ह्रास हो सकता है, कमी हो सकती है, दुग्ध उद्योग के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की भी कमी हो सकती है। इसलिए भैंसों की संख्या और उत्पादकता दोनों को बनाए रखना राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में लगभग 50 से 80 प्रतिशत अधिक वसा वाला होता है, 15 से 20 प्रतिशत अधिक प्रोटीन वाला होता है और साथ ही साथ 30 से 60 प्रतिशत तक अधिक कैल्शियम और अधिक कुल ठोस पदार्थ रखता है, जिसके कारण डेयरी प्रसंस्करण उद्योग में इसका विशेष महत्व है। इसी कारण भैंस को भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था का ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है। इसकी उच्च दुग्ध गुणवत्ता, बेहतर वसा और प्रोटीन स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता इसे अत्यंत मूल्यवान पशुधन बनाती है। भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भैंसों के संरक्षण संवर्धन और वैज्ञानिक प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि नीति निर्माता, पशु वैज्ञानिक, डेयरी उद्योग और किसान मिलकर भैंस पालन को प्रोत्साहित करें ताकि ये अमूल्य पशुधन आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके और देश को आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहे। तो किसान भाइयों और बहनों, ये जो दोनों सोना है, जो असली सोना है, हरा सोना सहजन और काला सोना भैंस, इन दोनों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। इन्हें बढ़ाएं और साथ ही साथ स्वयं भी समृद्ध बने और देश की आर्थिक प्रगति में भी आप अपना योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। किसान भाइयों और बहनों, महिला किसान खाद्य उत्पादन और घरेलू पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। महिला किसानों को सशक्त बनाने से कृषि उत्पादकता और सामुदायिक मजबूती में सुधार होता है। संसाधनों और शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी बाधाओं के बावजूद महिलाएं ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुल कृषि कार्यबल का लगभग 60% हिस्सा महिलाएं ही हैं और फसल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि यंत्रों में भी, चाहे वो ट्रैक्टर चलाना हो या कोई भी अन्य कृषि यंत्र, महिलाएं भी लगातार पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं कि जो हमारी महिला कृषक बहनें हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं, कौन से कृषि यंत्र वो चला सकती हैं, उनके लिए जो उपयोगी कृषि यंत्र हैं, उनका जो बुवाई रोपाई निराई सिंचाई या जो है कोई भी फसल काटना है लगाना है खाद डालना है, ये सब कार्यों के लिए ये कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, आइए जानते हैं।
1: किसान वाणी सुनने वाले से अगले पंचायन का ही अमरीका से राम राम भैया। देखो भैया आज हम अपना के बीच लेके आए हैं अल्पना बहनी का ही, कई बार आ चुकी हैं और बड़ा सुंदर जानकारी देती, तो यह बार हम इन्हें बुलाए हैं और यहाँ ही श्रीमती अल्पना शर्मा बहनी और यही कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक। तो अल्पना बहनी अपना के बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में
2: जी। नमस्कार किसान भाई एवं कृषक महिलाएं।
1: देखा बहनी यह समय तो खेती पाती का समय चलत है, सुंदर पानी बरसत है, मानसून भी समय से आ गया है। ता अपना से यह कहा कि देखा आजकल हर को का लगत है कि अच्छी उपराज होए और कम समय में होए, तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे आधुनिक कृषि यंत्र चले हैं, तो आप सोचित हैं कि अपना बताई कि कौन मेर से हमारे पास होए का चाहिए जिसे हमार कम समय लागे और ज्यादा उपराज होए। और यंत्र तो काम यह करत है कि कम समय में ही कम मेहनत में और कम लोगों में ये काम हो जाते। तो शुरुआत से बताई कि कौन मेर से हमारे पास यंत्र होए के चाहिए।
2: जी, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि खेती में जो लगभग 70-80% कार्य महिलाएं कर रही हैं, और पहले जो यंत्र बने थे वो पुरुषों के हिसाब से बनते थे, अब महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता है या महिलाओं की जो शारीरिक गांठ है उसके हिसाब से हमारा जो केंद्रीय कृषि अभियंत्रिकी जो संस्थान है भोपाल में, उन्होंने और साथ में और भी संस्थान है, उन्होंने कई कृषि यंत्र बनाए हैं जो आप सोचिए कि बुवाई से लेके कटाई गहाई तक हर कार्य में महिलाओं की कार्य दक्षता को बढ़ाते हैं और महिलाओं को कम समय में वो ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे यंत्रों के बारे में इसमें जानकारी देंगे।
1: बिल्कुल बहनी, तो सबसे पहले तो अब चला थे बुवाई का समय।
2: जी, जैसे बुवाई के समय की बात अपन करें तो अपन को जैसे मान लीजिए धान लगाना है, धान का थरा देना है, तो अपन सब जानते हैं कि उसके लिए अपन को नर्सरी बनानी पड़ती है, नर्सरी लगाना पड़ेगा
1: रोपा
2: लगाने के लिए। तो नर्सरी अगर आपको तैयार करना तो एक मेड़ बनानी पड़ेगी, एक ऊंची मेड़ बनानी पड़ेगी। तो मेड़ बनाने का भी यंत्र डेवलप किया गया
1: है,
2: उसको मेड़ बनाने का यंत्र ही बोलते हैं उसको। अच्छा। और उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2.5 हजार रुपए ही है। अच्छा। और वो एक ऊंची मेड़, और मान लीजिए आपको जैसे नर्सरी के लिए नहीं, मान लीजिए किसी खेत में आपको नाली बनानी है पानी निकालने की निकासी की, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये यंत्र हमारी बुवाई के लिए कि हम थरा देना तो उसके लिए जरूरी है, वो फायदा करता है। साथ में देखिए जैसे सब्जी भाजी है, तो अगर हमको पौध उसके हैं उसको हमको खेत में अपन को रोपा लगाना है, लगाना है उसको खेत में, तो उसके लिए सिंगल रो ट्रांसप्लांटर जो अपने वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर हम लोग बोलते हैं वो आपको मिलता है, वो एक बहुत उपयोगी यंत्र है कि आपने कहीं से थरा निकाला और वहां से निकालते गए और खेत में डायरेक्टली
1: लगा
2: एक एक करके। तो ये बहुत अच्छा सब्जी का लगाने के लिए ये यंत्र बना हुआ है। साथ में जैसे अगर हमको मान लीजिए मक्का की बुवाई करनी है, अभी मक्का की बुवाई, तो अपने पास डिब्लर है, नवीन डिब्लर है, कई तरह के डिब्लर्स हैं, तो उसमें अपन जो गोल दाने या जो मोटे दाने वाले बीज हैं उनको डालते हैं और उनको एक कतार में सिधाई में बुवाई कर देते हैं।
1: सीड ड्रिल कहते हैं का?
2: नहीं, सीड ड्रिल अलग है, वो ट्रैक्टर में लग के होता है। ये आपके हाथ से लगाने वाले उपकरण है जो महिलाएं मतलब मुश्किल से इसका जो वजन है ये समझिए 2-3 किलो के बीच में इसका
1: वजन, तो यही आसानी से उठा सके
2: और बिल्कुल साधारण, और जैसे महिला की शारीरिक संरचना रहती है गांठ रहती है उस हिसाब से बहुत हल्के फुल्के यंत्र बनाए गए हैं ताकि महिलाएं चला पाए और भैया लोगों की उतनी ज्यादा आवश्यकता ना पड़े।
1: हाँ।
2: तो उस हिसाब से बना है, तो ये डिब्लर्स भी हैं, इसमें रोटरी डिब्लर्स भी हैं जो जैसे गोल दाने वाले सीड्स हैं अपने सोयाबीन हो गया या चना हो गया, मटर हो गया या मक्का हो गया, इनको उसके द्वारा बुवाई
1: की जाए।
2: साथ में देखिए कि जैसे शेडोल की स्थिति है तो शेडोल में अपने बहुत बड़ा रकबा में धान लगता है। धान में अपन क्या करते हैं कि या तो अपन रोपा लगाते हैं या फिर अपन सूखापन छिटका
1: करते
2: हैं, है ना। तो छिटका करने में क्या है कि हमारा पूरे खेत की उत्पादन कम हो जाती है, हमको कम उत्पादन
1: कैसे कि कहूं पड़ी कहूं नहीं पड़ा
2: तो उसके लिए भी पैडी फोर रो सीडर दिया है, मतलब चार कतार में बुवाई वाला यंत्र है।
1: अच्छा। हाँ,
2: तो उसमें क्या करना रहता है कि धान को हम हल्का सा अंकुरित कर लेंगे, जैसे हाँ। हम लोग थोड़ा अंकुरित हो जाता है, बीज उपचार करके अंकुरित हो गया। उसके बाद इसमें चार आपको ड्रम बने हुए हैं और इस उपकरण का वजन 7 से 8 किलो है और प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अगर जो मचा हुआ हल्का मचा हुआ पानी वाला खेत है, हल्का पानी वाला, उसमें अपन इस यंत्र को बिल्कुल आराम से महिला खींच लेती है तो 8 उसकी लाइन एक
1: साथ
2: बन जाती है।
1: हाँ, ये कितनी अच्छी बात,
2: मतलब बिल्कुल आपको कतार में बुवाई हो जाए।
1: यही क्या कहते हैं
2: इसको, बोलते हैं कि धान की बुवाई के लिए चार कतार वाला यंत्र जो है।
1: अच्छा,
2: फोर रो पैडी ट्रांसप्लांटर।
1: अच्छा,
2: तो ये बोलते हैं। तो देखिए, आपको मैंने जितने भी यंत्र बताए ये सारे कतार में बुवाई वाले हैं कि आपको कतार में बुवाई करेंगे।
1: देखा,
2: तो
1: कतार से कतार में फायदा यह है कि रास्ता है, बीच में जा सकते हैं और गुराई निंदाई हुई सके आसानी से।
2: हाँ, अगर मान लीजिए हमने कोई यंत्र से बुवाई किया है तो हमारी कतार में बुवाई हुई, इसके आगे का अपना जो भी कृषि कार्य बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर हमको निदाई गुड़ाई करना है तो हम उसके लिए भी हमारे पास महिला उपयोगी यंत्र हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे हम धान के खेत हैं, सब उसमें पानी रहता है ना, पानी भरा रहता है, तो उसके बीच में अगर हमने धान को कतार कतार में लगाई है तो हम उसके बीच में हम कोनो वीडर चलाते हैं।
1: अच्छा।
2: तो कोनो वीडर से, जैसे मान लीजिए महिला एक है कि हाथ से निदाई गुड़ाई कर रही है और एक है कि कोनो वीडर से कर रही है, तो लगभग जो हाथ से कर रहा है जो कोनो वीडर से, करीब करीब 4 गुना ज्यादा वो निदाई
1: तेजी से कर लेगा। बढ़िया,
2: है ना। और कोनो वीडर की ज्यादा आपको लागत नहीं लगती, 1200 से 1200 रुपए उसकी लागत रहती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिली कहाँ यंत्र?
2: ये देखिए, जैसे अपन बात करें अपने जिले में, जैसे अपना कृषि अभियंत्रिकी जो विभाग है उसके माध्यम से भी मिल सकता है, साथ में कृषि विभाग में भी समय समय पर ये चीज अनुदान में आती है।
1: अच्छा।
2: तो उसके द्वारा भी मिल सकता है, या फिर एक MP एग्रो करके एक है, उसमें भी ये सारे यंत्र
1: मिल सकते हैं। हाँ,
2: और इनको अगर किसी भी महिलाओं को इसके और इसको देखना है, इसको परखना है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रारूप के रूप में एक एक दो दो यंत्र ही रखे हुए।
1: अच्छा,
2: हैं।
1: अच्छा, यही हम सीख सके थे जाके कौन मेर से हम एक उपयोग कर इस्तेमाल कैसे
2: कैसे काम करता है, कैसे वो सीख सकते हैं।
1: हाँ,
2: तो देखिए, अगर हम हाथ से निदाई गुड़ाई कर रहे हैं तो हम कम मात्रा में निदाई गुड़ाई कर पाएंगे और उसमें
1: समय भी लगी,
2: समय ज्यादा लगेगा,
1: मेहनत लगी तो थक जा।
2: हाँ, तो उससे 4 गुना ज्यादा अगर हम कोनो वीडर से कर लिए, और मान लीजिए जैसे सूखे का खेत है जहाँ हमने सब्जी भाजी लगाई है, तो वहां के लिए भी अपने पास यंत्र है निदाई गुड़ाई।
1: अच्छा।
2: के लिए उसमें अपन ट्विन व्हील हो नाम का यंत्र रहता है, जैसे पुराने जमाने में जो बच्चा एक लकड़ी का
1: गाड़ी चला हो, जब चला सीखा थे,
2: बिल्कुल वैसा ही ये उपकरण है।
1: अच्छा।
2: थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, वजन बहुत कम है, इसका वजन 3 से 4 किलो ही है।
1: अच्छा।
2: और इसकी भी लागत उतनी ही है कि इसका कॉस्ट जो पड़ता है 1000 से 1200 रुपए में मिल जाता है।
1: देखिए भैया, सस्ता भी है, हल्का भी है और उसे उपराज की मात्रा ज्यादा हो जाती है।
2: तो सोयाबीन का जैसे खेत है या सब्जी भाजी का खेत है तो हम ट्विन व्हील हो चढ़ा सकते हैं, जो सूखे वाले खेत है। पानी वाला खेत है, अगर हमने धान लगाया तो उसमें कोनो वीडर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हमने हाथ से निदाई गुड़ाई करी तो उससे क्या है कि जड़ मिट्टी में ही रह जाता है, पूरा जड़ नहीं निकल,
1: उखड़ नहीं पावे।
2: हाँ, तो आप जब तक आखिरी तक पहुंचेंगे आपका इस सिरे से फिर से जो चारा है फिर से जमने लगेगा।
1: जम जाता
2: है। इसमें यंत्र के द्वारा करने से ये है कि वो चारा आपका पूरी तरह से जड़
1: से
2: निकलेगा।
1: हाँ।
2: और वो मिट्टी में ही मिलेगा।
1: हाँ, तो वो खादा के काम कर ले,
2: खाद का काम करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी को मिलेगा, साथ में आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी होगी।
1: हाँ।
2: वायु का संचार होगा, तो आपका जो भी पौधा है, अगर वो धान नहीं है, अगर दलहनी है तो उसमें आपके पौधों की शाखाएं ज्यादा आएंगी, अगर धान है तो कंसे बहुत ज्यादा आएंगे, तो उत्पादन आपको ज्यादा
1: मिलेगा। बिल्कुल।
2: तो ये यंत्र उपयोग करने से एक तो ये है कि महिला की कार्य दक्षता बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पे वो समझिए कि 1/2 काम कर रही है तो उतने ही समय में वो 4 गुना
1: काम कर ले। हाँ। और कम महिला भी लगी।
2: हाँ, और साथ में आपकी मिट्टी की भी उर्वरा शक्ति
1: बढ़ जाती,
2: तो आपका उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो दुगना फायदा महिला के लिए।
1: बिल्कुल,
2: तो ये तो देखिए निदाई गुड़ाई की बात होगी, मान लीजिए जैसे हम बीज बोने जा रहे हैं तो हमको बीज को उपचारित करना हर किसी को पता है,
1: बहुत जरूरी है।
2: लेकिन लोग क्या है कि बीज में रासायनिक का वो इस्तेमाल करना है तो हाथों के लिए किसके लिए कैसा वो अपने को कैसा इफेक्ट करेगा वो भी सोचते हैं वो लोग। तो उसके लिए बीज उपचार का ड्रम भी बना हुआ है कि आप उसमें बीज डाल दीजिए, आप उसमें दवाई डाल दीजिए, उसका लॉक बंद कर दीजिए और उसको आप एक उसमें हैंडल बना है उसे घुमा दीजिए, तो उससे आपको वो पूरे में बराबर मात्रा में आपकी दवाई मिल जाएगी और पूरा बीज आपका उपचारित हो जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए या कृषि के लिए इतने अच्छे यंत्र बने हुए हैं कि आराम से इंसान इसका उपयोग कर सकता है। साथ में अभी के दिन में जैसे अपन मूंगफली की बात करें, मूंगफली एक
1: जायद फसल होती है,
2: तो मूंगफली जैसे ये है कि उसको फोड़ना एक बहुत कठिन कार्य रहता अच्छा। है बीज निकालना हाँ। तो उसमें महिलाओं का बहुत समय जाता है और वही उसी को करने के लिए अब मूंगफली फोड़ने का यंत्र भी बना है
1: अच्छा।
2: आप उसमें पूरी सेंगी मूंगफली उसमें डालिए हाँ। और उसको बस आपको हल्का सा उसमें एक हैंडल बना उसको चलाना है हाँ। और मूंगफली फूट के और छिलका फूट के आपको नीचे गिर जाएगा, उसको आपको
1: दाना
2: हाँ फटक देना, तो आपका बीज तैयार हो जाएगा। महिलाओं के लिए इतना अच्छा यंत्र है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड नट डिकॉर्टिकेटर, मूंगफली अच्छा। फोड़ने का यंत्र
1: अच्छा।
2: तो इसकी भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, वो 2000 के अंदर ही है इसकी कीमत।
1: देखो भैया सबसे बड़ी बात की यह कम पैसा में मिला था तो हर को के पहुंच में है
2: हाँ। और मान लीजिए कि अगर हमारे पास पैसे का उतना साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो समूह की तरफ से, हर समूह की तरफ से हम जैसे 10-12 लोगों का हमारी महिलाओं का समूह
1: ये ले ले, कौन वो ले ले, कौन वो ले ले मशीन, तो जब हमें जरूरत है तो वो ले ले आओ, ये हो सकते
2: करके कर सकते हैं, या फिर समूह में इकट्ठा एक साथ ये मशीन खरीद के रख ले
1: हाँ।
2: और जिसको जब जरूरत हो तो किराए के रूप में इंसान
1: हाँ।
2: इस्तेमाल कर हाँ। सकता
1: हाँ। सही
2: वो
1: है,
2: वो भी एक साधन हो सकता। तो अगर हमको इच्छा है कि हम बहुत अच्छे से खेती किसानी करेंगे
1: हाँ।
2: तो हमको ये सारे यंत्र का उपयोग करना सीखना पड़ेगा और इनका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये तो हम आए थे कि निदाई गुड़ाई तक अपन ने बात करी, बीज उपचार की बात कर ली, उसमें कौन से यंत्र हो रहे हैं। फिर देखिए कि जैसे मक्का है, मक्के का भी लोग कई लोग आटा बनाते हैं, मक्के का बीज भी निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए अभी मक्का बोने का समय, तो जो उसका जो ठूंठ रहता है तो उस मक्के का पूरा मक्का का दाना हटाने के बाद जो रहता है
1: अच्छा, हाँ।
2: मक्के में
1: हाँ, हाँ।
2: तो आप देखिए महिलाएं क्या करती, दाना एक एक उंगली से निकालते हैं
1: है
2: ना, तो उंगलियों में भी डैमेज होता है, दिक्कतें होती हैं, बताते हैं
1: समय ज्यादा लगाते,
2: समय भी ज्यादा लगता। तो उसके लिए आजकल एक मक्के का भी एक यंत्र बना है, मेज शेलर, उसको हम लोग मेज शेलर बोलते हैं, मक्का छीलने का यंत्र। तो उसमें आपको एक वो 60 रुपए का यंत्र है
1: हाँ।
2: और कोनिकल टाइप का है, उसमें आप मक्का ऐसे फंसा देंगे
1: हाँ।
2: और उसको आपको हल्का हल्का ऐसे घुमाना और बस उसमें से सारे दाने झरिया के निकल जाएंगे। इतना इतना सस्ता, इतना सुलभ यंत्र है, चाहे आप उस मक्के का आप बोने के रूप में उपयोग करें
1: हाँ।
2: और चाहे आप इसको आटा बनाने के
1: लिए पीसे,
2: तो दोनों चीज में आपके लिए आसान, और इसका कीमत मात्र 60 रुपए। तो ये इतना आसान सारे यंत्र बने हुए हैं। इसके बाद देखिए जैसे आप अपन ने बुवाई कर ली, निदाई गुड़ाई कर ली, अब आते हैं बात कटाई पे। कटाई पे देखिएगा कि हमारे जो नॉर्मली हमारी महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं वो एक
1: हसिया से काटती थी हाँ।
2: है ना, तो हसिया को समय समय पर उनको धार भी देना पड़ता
1: हाँ।
2: है, कई बार अप्रिय घटना होती है कि उनकी उंगलियां कट
1: गई, कट जाती है, और देखा भैया घना घना होते तो कहूं कहूं सांप बिच्छी भी हो जाते हैं,
2: कुछ दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो इसके लिए एक दांतेदार हसिया बना हुआ है
1: अच्छा।
2: दांतेदार हसिया जैसे हमारी बाकी हसिया रहते हैं वो प्लेन रहते हैं, उनमें धार देना पड़ता
1: हाँ।
2: है, इनमें धार देने की आवश्यकता नहीं रहती
1: अच्छा।
2: और इनमें ना आपको जैसे अपन को समझ में नहीं आता, अपन वो प्लेन हसिया से काटते हैं तो अपन के मतलब अपनी बहुत ताकत लगती है,
1: मेहनत लगती है,
2: और इसमें क्या है उतनी ज्यादा ताकत भी नहीं लगती और बहुत आसानी से, और ना धार देने की समस्या और ना इसमें धार रहता है कि आपकी उंगलियों को नुकसान
1: हो अच्छा।
2: ये वाली हसिया भी बनी हुई है,
1: कहते
2: इसको हम लोग अंग्रेजी में सिरेटेड सिकल बोलते हैं
1: अच्छा।
2: और वैसे हिंदी में इसको दांतेदार हसिया बोलते
1: हाँ।
2: हैं। तो ये 80 से 100 रुपए के बीच में आती है
1: अच्छा।
2: और बहुत आसानी से, और जितनी भी ये मशीनें हैं मैं एक मूलता आपको बताती हूँ कि ये 3 से 4 गुना कार्य को मतलब आपका कार्य करने की गति को बढ़ा देता है
1: हाँ।
2: और साथ में हम लोग हर मशीन जैसे जो भी है ना महिलाओं की बोलते हैं कि इनको कार्य में बहुत दिक्कत हो रही, तो उसमें हम लोग ड्रजरी नापते हैं
1: अच्छा।
2: तो हर मशीन में ना इनकी ड्रजरी कम से कम 30 15 से 30 प्रतिशत तक घटती है तो अच्छा। मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है हाँ। और इनके जो कार्य करने से उनके शारीरिक जो तनाव हो रहा था वो घट रहा
1: वो भी घट रहा
2: तो
1: है
2: दोनों हाँ। चीज इनके लिए फायदेमंद है कि हमारी महिलाएं ज्यादा दिन तक काम कर पाएंगी इनका शरीर बना रहेगा तो और ज्यादा काम कर पाएंगी तो इसी उद्देश्य से ये सारी मशीनें बनी है। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी स्टेज की कि हमको बीज वगैरह जो रहते हैं उनको साफ करके संग्रहित करना रहता है
1: हाँ, भंडारण
2: के लिए कटाई गहाई के बाद उनको साफ करके तो साफ करने के लिए देखिए कि एक तो है कि आप साधारण सूपा से या छन्ना से साफ करें
1: हाँ।
2: उसमें आप देखिए कि आप बहुत मुश्किल से अगर बहुत पूरी ताकत से करेंगे तो एक दिन में आप एक क्विंटल तक कर पाएंगे
1: हाँ।
2: अगर महिला
1: इतना नहीं हो पाएगा
2: हाँ, पूरा सुबह से शाम तक लगे रहे तो एक दिन में वो एक क्विंटल बहुत मुश्किल से निकाल पाएगी हाँ। साफ करके बीज इसमें क्या है कि हैंगिंग टाइप ग्रेन क्लीनर रहता है जिसमें कई आकार के छन्ने रहते हैं
1: हाँ।
2: तो वो छन्ना क्या करता है कि आपके ऊपर गेहूं साफ करना है या धान साफ करना है या मोटे चना वगैरह
1: हाँ,
2: तो उस हिसाब से आप उसमें छन्ना फंसाएंगे
1: अच्छा।
2: और उसको आपको जैसे अपन झूला टांगते थे बच्चों के वैसे करके उसको रस्सी से आपको ऊपर टांग देना है
1: अच्छा जगह भी ना घेरी
2: हुआ वैसे करके उसको टंग है और वो आपको सिर्फ झूला जैसे अपन हिलाते हैं वैसे आपको हिलाना है और आपका दाना पूरा साफ
1: क्या
2: घंटों का कार्य आपको वो मिनटों
1: में करके
2: कर दे और बहुत महंगा नहीं है वो भी 2-2.5 हजार के अंदर ही है उसकी अच्छा। कीमत और बहुत अच्छा उपकरण है बहुत सारे काम आसानी
1: से हो जाते हैं
2: और साथ में एक और उपकरण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में है ये उड़ीसा से हम लोग ने मंगवाया था OUAT से जैसे यहाँ महुआ का बहुत क्षेत्र है महुआ बहुत जगह हुआ जाता है तो आपने देखा होगा कि जब महुआ होता है तो डोरी भी होती
1: हाँ,
2: है
1: हाँ, हाँ।
2: और डोरी को फोड़ने के लिए इंसान पत्थर का इस्तेमाल करता
1: हाँ।
2: वो पत्थर कई बार हाथ
1: हाथों में लग जाता
2: हाथ हाँ। भी कुचल जाता
1: और समय तो लगता है
2: हाँ समय भी लग रहा है तो महुआ डोरी फोड़ने का भी यंत्र बना
1: बहुत भाई बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं
2: मतलब उसमें आप देखें कि एक घंटे में आप 30-40 किलो महुआ को फोड़ सकते हैं डोरी
1: अच्छा,
2: को हाँ। और उसमें जैसे अपन पत्थर से कुचलते हैं तो अपना जो दाना रहता है
1: महुआ टूट जाता है
2: पूरा फूट के थितिल जाता है उसका जो अपन तेल बनाते हैं लो क्वालिटी का बनता है
1: अच्छा
2: और इसमें क्या है कि दाना बकायदा 2 भाग में टूटेगा जैसे उसको टूटना चाहिए उसमें तो इसको फिर आप सुखा के इसका तेल बनाएंगे तो ये हाई क्वालिटी का तेल
1: क्वालिटी और मात्रा
2: भी ज्यादा निकलेगा आपके हाथों में भी कोई नुकसान नहीं है इसमें ऊपर एक हॉपर दिया है वहां से आपको बीज डालना है और एक हाथ में हैंडल है उसको चलाते जाना तो बीज अच्छा। 2 टुकड़े में कट टूट के और नीचे से निकलता जाएगा तो वो मतलब ऐसे ऐसे यंत्र हैं हर क्षेत्र के हिसाब से यंत्र बने हैं जिनको जैसा यंत्र सूट हो वो उस यंत्र का उपयोग करें और वहां की महिलाएं उसका लाभ लें
1: क्या बात है बहुत सुंदर बताया नल्पना बहनी अब यह जरूर बता देगी ये मिली कहाँ सुन तो ली है सब ऐसा बताइए कि उपलब्धता आसानी से हो
2: हाँ,
1: जाए यह बारे में जरूर बताइए
2: जी जैसा कि मैंने पहले भी बताया अगर इस केंद्र का प्रायोगिक आपको कुछ करना है प्रैक्टिकली देखना है तो आप हमारे केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं 1-2 यंत्र हर तरह के यंत्र 1-2 प्रति हमने रखा हुआ है वो आके उसको चला के कि कौन सा उनको हल्का लग रहा है कौन सा उनके दक्षता को बढ़ा रहा है वो आके देख सकते हैं चला के कर सकते हैं और मान लीजिए इसको किसी को खरीदना है तो एक बार कृषि अभियंत्रकी विभाग से बात कर लें जिले के और वहां पे जाके उनसे बात कर लें कि हम लोग इतने लोग हैं हमको ये वाले यंत्र की आवश्यकता है तो अगर लेटर के माध्यम से वो हमारे भोपाल के जो कृषि अभियंत्रकी वाली संस्थान है उनके द्वारा वो मंगवा सकते हैं वहां से यंत्र तो वहां से आ जाएगा नहीं तो डायरेक्ट वहां का पता नोट कर लें जो भोपाल में हमारा CIA एक संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का
1: अच्छा
2: है ना केंद्रीय कृषि अभियंत्रकी संस्थान जो है भोपाल में नबी बाग में है तो वहां पे आप कई लोगों को इकट्ठा समूह के माध्यम से मंगवाना है तो वहां भी आप आवेदन देके वो लोग भी भेज सकते हैं
1: अच्छा,
2: क्योंकि जैसे अच्छा। यंत्र हमारे पास जो रखे हुए हैं
1: वो
2: हमने वहीं से यंत्र मंगवाए
1: अच्छा अच्छा
2: तो ये लोग भी सब इकट्ठा सामूहिक आवेदन देके वहां से भी मंगवा सकते
1: तो मतलब अपना के ऑफिस में जाके हम आवेदन दे दे
2: ऑफिस में जाके नहीं आपको मैं हाँ आप ऑफिस में आके यंत्र
1: देख लीजिए
2: हाँ, हाँ। यंत्र पहले देख लीजिए फिर उसके बाद हम आपको पता बता रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे पता ले लें और उसमें आप डायरेक्ट आवेदन कर
1: अच्छा तो अपना के घर है वो
2: आ जाएगा आपकी तरफ वो पहुंच जाएगा
1: बहुत बढ़िया अपना बेनी बड़ा सुंदर बताए बता बता तो 20 मिनट हो गया पर जानकारी बड़ी बढ़िया रही और अगर हमार महनिहारे जो उन्हें अगर कंधे से कंधा मिला के काम करें कि आजकल समय आ गया है लोग कहा थे तो दुगुन चौगुन अपना के ऊपर आजा होई तो अपना के ऊई करी अपने के मन से रुआ करी अपना करब तब निश्चित रूप से दुगनी आय हुई जाए और अगर ये छोट छोट यंत्र अपना पचे ले ले जैसे बताए ना हमारे अपना बहनी कि समूह के रूप में ले ली जाए तो यह एक बढ़िया काम हो सकत है तो अपना बहनी बहुत सुंदर जानकारी दी है हमारे स्टूडियो में आके अपना का बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: किसान भाइयों और बहनों किसान वाणी कार्यक्रम आज यहीं तक जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान आप सबको नमस्कार और राम राम

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रात्रि के 8 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, आप जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: Surgióme.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
2: नीति आयोग ने 17 जुलाई को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: शुभमय, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी कि निवेश अनुकूलता सूचकांक क्या है और इससे हम क्या समझें?
3: अगर हम सहज भाषा में इसकी बात करें तो कोई अगर किसी राज्य में जाके अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो स्टेट में करना कितना संभव है और किया कितना असंभव है, बस यही है इन फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। हम इसको आगे इस पर बहुत सारे बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि करना संभव है, करना असंभव है, तो संभव का मतलब क्या होता है, असंभव का मतलब क्या होता है, किस जगह पे कौन सा राज्य क्या सुविधा देती है, कहाँ पे अड़चने आ जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात भी करें तब भी बात वहीं पे से शुरू होती है कि स्टेट में काम करना आराम है, आसान है या दुष्कर है। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का बेसिक या जिसे कहते हैं अंडरलाइन पॉइंट। और आपने जैसे बताया सही कि नीति आयोग ने ये इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स एक जारी किए हैं और ये सिर्फ जैसे आपको मैं बता दूं ये वाला चीज इज पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, बट इस तरीके का स्टेट्स की जैसे मैं कहूं कि स्टेट्स का कितना यूजफुल है, कितना किस तरीके का स्टेट्स के पॉलिसीज हैं, इस पर बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं। नीति आयोग की तरफ से ही कई सारे रिपोर्ट्स पिछले सालों में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि वो भी मोर ऑर लेस सेम चीज को ही दर्शाता है। एक रिपोर्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या किस स्टेट्स किसने तरीके से अपने पॉलिसीज को बनाए हैं ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि भाई यहाँ जाना चाहिए या यहाँ पे जाने से क्या क्या संभावनाएं या क्या क्या सहायता मिल सकती है।
2: लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें शुभमय, तो कहाँ तक ये जो इंडेक्स सामने आया है इस ग्राउंड रियलिटी को कहाँ तक दर्शाता है, किस हद तक सफलतापूर्वक दर्शाता है, अगर मैं पूछूं आपसे?
3: अशीक जी, ग्राउंड रियलिटी की ही इसमें ये मापदंड है या इसका ही अनुसरण किया गया है। सिंपल बात है कि अगर एक निवेशक किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन से सर्विसेज हैं जिसपे वो स्टेट माना जाता है, अगर है तो उन प्रोडक्ट्स के बिजनेस में स्टेट कितनी सहायता देती है या कितने तरीके का अपॉर्चुनिटीज सामने प्रदान करते हैं। एक तरफ होता है इसमें कि हम अगर मोटा मोटी अगर इन चीजों को देखें कि एक तरफ तो होता है इंडिया में कि राजतंत्र यानी कि ब्यूरोक्रेसी वो कितना सहायक है या वो कितना दुष्कर है हैंडल करने में, म्युनिसिपल गवर्नेंस म्युनिसिपल लॉज किस स्टेट्स के कितने अच्छी तरह से बने हुए हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक की यात्रा में कितने जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस है या कितनी
2: सुविधाएं
3: आसानी से जा सकते हैं। तो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज। एंड फिर नेक्स्ट स्टेज में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है कि भाई बिजली का लाइन, पानी की सप्लाई, वर्कर्स आएंगे सर्विसेज के लिए या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके लिए रहने का जगह, वो जो रहने का जगह होगा उसमें क्या सुविधाएं पॉसिबल है नहीं है, कितना किस तरीके का मेडिकल सपोर्ट है, अगर इस बिजनेस में कुछ अगर रिस्की प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके स्ट्रक्चर ही बहुत फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए किस तरह के सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें ही हमें दर्शाता है। और इसी चीज से एक बिजनेस पर्सन को पता चलता है कि भाई इस स्टेट में काम करना मुनासिब है या इसमें मुनासिब नहीं है जी।
2: अनुकूलता की बात जहां आती है वहां एक तरह से अगर ये कहें तो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के बीच में स्टेट्स के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, हालांकि ये बहुत हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए या बिल्कुल ऊपर जाने के लिए एक रेस टू द बॉटम जिसे कहें, रेस टू द बॉटम का मतलब ये है कि क्या स्टेट्स ऊपर पहुंचने के लिए सूचकांक में कुछ ऐसे अनसस्टेनेबल फिस्कल इन्वेस्टमेंट या इंसेंटिव नहीं देंगे जो कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ कहीं पर ऐसी कुछ गुंजाइश बन सकती है जहां पर कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ ऐसे बहुत ही अनसस्टेनेबल फिस्कल इंसेंटिव दे देंगे जिसमें कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा?
3: हम अगर देखें तो राज्यों में जो टैक्स की जो स्टेट लेवल टैक्सेस है, मैं म्यूनिसिपल लेवल जो लेवीज है उसको मैं इससे अलग रख रहा हूँ, स्टेट लेवल टैक्सेस है उसको करीब करीब इक्वलाइज कर दिया गया है जीएसटी के चलते। अभी किसी भी राज्य के लिए जीएसटी के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट मैकेनिज्म देना लगभग असंभव है, और चूंकि जीएसटी इज अ नेशनल लेवल तो जो भी स्टेट जो भी करेंगे वो जीएसटी के तहत ही आएंगे, तो एक तो वो चीज है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस भी राज्य नहीं केंद्र सरकार तय करते हैं, कस्टम्स ड्यूटी भी राज्य सरकार नहीं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसे हैं जिनके कस्टम्स ड्यूटी पर राज्य का बनता है तो उस पर जरूर कुछ कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन स्मार्ट स्टेट्स वही है जो टैक्सेस को इस तरह से चलाते हैं ताकि अपना बजट भी सही रहे और आगे जिसे कहते हैं रेस टू द बॉटम का गुंजाइश ना आए। तो ये तो रही फिस्कल चीजों की बातें अगर हम इसको छोड़े। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बाकी और क्या चीजें हो सकता है, किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी कंपनी को, किसी भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, खासकर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ही बात करें तो किसी भी इंटरप्राइज को चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक रिस्क कवर। अगर हम इन चारों चीजों को अगर हम एक एक करके देखें, लैंड में इनफैक्ट इसमें तो प्रतिस्पर्धा उल्टा होना चाहिए, ज्यादातर राज्यों में अभी भी लैंड मामले में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। किसी भी राज्य में आप भारत में पहुंच जाइए, जमीन खरीदना किसी भी इंडस्ट्री के लिए और खासकर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बाधक होता है। बड़े इंडस्ट्रीज तो अपना लॉयर्स लगा के ये लगा के वगैरह करके निकल जाएंगे, लेकिन छोटे जो उद्योग है, खुद जो उद्योग है, जो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए छोटे उद्योग जो होते हैं उनके लिए शहर से दूर बैठ के कोई काम करना असंभव है, उनको शहर के पास ही नहीं शहर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास वो उनका वो टर्नओवर में उनके पास कैपेसिटी नहीं होगा कि वो अपना चीज लेकर शहर तक जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी भी शहर में, राज्य में अगर कितना बारीकी से वो इन चीजों को देखे हैं उस पर काफी संदेह है। राज्य लैंड इज समथिंग जिस पर लोग स्टेट्स ने अटेंशन नहीं दिया है और बहुत सारे वजह से इसको इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडेक्स में एक ये चीज उभर के सामने आता है कि लैंड इश्यूज में स्टेट्स ने कितना काम किए हैं, और आप देखेंगे कि जिस स्टेट्स ने काम किए हैं, थोड़ा बहुत भी अगर काम किए हैं तो वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज की सक्सेस या फेलियर में लैंड का अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा होता है लेबर। हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि औसतन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में हर टेक्सटाइल यूनिट में एवरेज एम्प्लॉयमेंट इज 1.5, यानी कि सिर्फ आदमी खुद और किसी से पार्ट टाइम हेल्प ले रहा है, बस यही है इंडस्ट्री कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट का चित्र। और वो चित्र इसलिए है क्योंकि लेबर को इंप्लॉय करना, लेबर को किसी काम में रखना हमारे लिए इतना दुष्कर बना हुआ है, और इसीलिए ये भारत सरकार की अभी का जो पहल लेबर कोड्स, जो चार लेबर कोड्स आए हैं वो एक बहुत ही बड़ा सुदूर प्रसारी सुदूर काम है कि उसने काफी हद तक ये लेबर लॉस को रिलैक्स किए हैं। अभी भी देखिए जैसे हमारे देश में कोई जैसे टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे या दूसरे इस तरह के यूनिट्स में लोगों की जरूरत होती है, मतलब अगर यूनिट अगर सच में अगर कामकाज ही का हो तो करीब 10 से 15 हजार लोगों की जरूरत होती है एक यूनिट में
2: जी।
3: 10 से 15 हजार से नीचे कोई यूनिट चल ही नहीं सकता है अगर वो सच में अगर एक्सपोर्ट मार्केट में चलेंगे। आप सोचिए 10 से 15 हजार लोग कितने एम्प्लॉयमेंट, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र खुल जाता है। लेकिन अभी भी भारत सरकार के उद्योग के बावजूद रूल ये है कि सिर्फ कि जिस यूनिट में 300 लोग है, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है कि अप टू 300 पीपल का हायर तक रूल्स रिलैक्स किए गए हैं, लेकिन 300 से ऊपर जाते ही रूल्स काफी कठिन है। तो अब भारत सरकार की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार सिर्फ यहीं तक कर सकते थे, लेकिन इसके आगे कि 300 तक इंडिया गवर्नमेंट ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, तो आगे चल के जो रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है।
2: बिल्कुल।
3: अब हम बात कर रहे हैं 10,000 या 15,000 लोग जैसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे 300 लोग आए या ना आए उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यही सारे जो रिलैक्सेशन है ये बहुत बड़ी जरूरी है। तो एक वो बड़ी चीज है, तो ये रेस टू द बॉटम नहीं, ये तो रेस टू द पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी है अगर स्टेट्स अगर इन चीजों को समझे। एक वह लैंड, दूसरा वह लेबर, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल के मामले में मैं समझता हूं कि स्टेट्स को एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपिटल ज्यादातर आते हैं बैंक से या बड़े बड़े कंपनी से, एनबीएफसी से, जिन पर राज्यों का बहुत ज्यादा हाथ नहीं होता है। हालांकि वहां भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, वो जरूर दे सकते हैं। दूसरे जैसे फ्रीबीज वगैरह आपने टिप्पणी किया और वो बात सही है कि वो फ्रीबीज वगैरह देने के बजाय अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दे तो बहुत काम हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज जो स्टेट्स ने किए हैं, कुछ कुछ स्टेट्स ने किए हैं, वो है कि वुमेन ट्रेवल बहुत सारी जगह पे उसको फ्लेक्सिबल कर दिए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में। अब जैसे बिहार में अभी शुरू हो गया है पिंक बसेस, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये कदम लाया जा रहा है, दिल्ली में भी शुरू हुआ है कि वुमेन के लिए एक फ्री ट्रेवल का एक प्रोग्राम चल पड़ा है बहुत सारे स्टेट्स में, और वो बहुत अच्छा चीज है कि वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाए। लेकिन साथ में चीज है सिक्योरिटी कि वुमेन जब शाम को ऑफिस घर से फैक्ट्री से आएंगे तो उस वक्त उनको सिक्योरिटी कहां तक मिलता है। अब हर वुमेन के पीछे तो एक पुलिस पर्सन नहीं खड़ा सकता है ना,
2: बिल्कुल,
3: लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का जो एनवायरमेंट है वो सिक्योरिटी का एनवायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और ये तो केंद्र सरकार नहीं कर सकते ना, ये तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट पुलिस में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि वुमेन एम्प्लॉय वर्कफोर्स काम में कर सके। ग्राउंड रियलिटी की आप जो बात कर रहे थे बहुत सही है कि ग्राउंड बहुत सारे स्टेट्स ने अपने इस मामले में बहुत अच्छे अच्छे कदम अपनाए हैं, और इस वजह से उस स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयज का संख्या एकदम जिसे कहते हैं तेजी से आगे बढ़ा है। मैं एक एग्जाम्पल दूं दो स्टेट्स का, गुजरात और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग किया गया है, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयमेंट और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जहां पे वुमेन की जरूरत खास ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर से बोलिए या इवन सिंपल घड़ी मैन्युफैक्चरिंग, वॉच मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे वो लोग कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड डेवलप कैपिटल रिस्क वाली चीज हम बाद में बात कर सकते हैं, बट ये तीनों चीजों में ही अगर स्टेट्स अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ अट्रैक्टिव सॉल्यूशंस उनके सामने निकल के आएंगे।
2: शुभम, अगर हम बात करें ये कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो नेचुरली ये होगा ही होगा इनटू टियर्स लाइक टॉप परफॉर्मर्स। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो एस्पायरिंग स्टेट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर के ब्रैकेट में होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो आपको क्या लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर ऐसा क्या करें जिससे कि जो एस्पायरिंग स्टेट्स हैं जो नीचे हैं सूचकांक में वो भी उसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएं?
3: बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज जिसका हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार कर रहे हैं, नीति आयोग खासकर इसमें बहुत काफी काफी काफी अच्छे काम किए हैं। नीति आयोग ने बहुत सारे स्टेट लेवल में क्या काम सफल हुआ है, किस स्टेट में कौन सा वाला काम सफल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट ही नहीं, बार बार उस लिस्ट को आगे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा सक्षम कार्यक्रम है कि नीति आयोग का जो देखें डेटा एनालिस केस स्टडीज और काफी डिटेल्ड मात्रा में उन्होंने काम किया है इसमें। अभी उन्होंने म्यूनिसिपल गवर्नेंस के ऊपर भी रिपोर्ट्स निकाले हैं, इस तरह से बहुत सारी रिपोर्ट्स। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स जब काम कर रहे हैं, जो स्टेट्स पीछे हैं, बहुत सारे टाइम में स्टेट सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का जारी करने का वजह यही है, ये बात सिर्फ कैश सपोर्ट की नहीं है, इनफैक्ट कैश सपोर्ट से ये काफी दूर है, ये है टू डू स्मार्ट पॉलिसीज, जैसे स्मार्ट पुलिसिंग या स्मार्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये कोई कैश वाली बात नहीं है, इट इज सिंपली अबाउट कि हम स्टेट्स अपना जो कैपेसिटी है उसको काम में लगाएं।
2: आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ मैं
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य
5: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में
6: I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म धड़कन का दो गाना, युगल स्वर अलका याग्निक और सोनू निगम के, गीतकार समीर हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों की प्यास से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जान, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन आनंद मिलिंद की।

0: इस अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए अब सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर के बोल, युगल स्वर आशा भोसले और उदित नारायण के हैं। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: हम आपको बताना चाहेंगे कि विशेष जयमाला कार्यक्रम में कल संध्या 7 बजे आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित कार्यक्रम। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कांबले। याद रखें कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बी देवैया पर केंद्रित होगी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम रिफ्यूजी, स्वर सोनू निगम और अलका याग्निक की। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
6: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
5: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एच डी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री

0: श्री वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam, and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahma Yugam and Chandu Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shed, Chandu Champion, Hindi, for a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
1: Chairman of Jury non-feature film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best short film is Humsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek.
3: Best Direction, Statue of Unity, Ekta Ka Prateek, Hindi, Citation, for creatively consecrating the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Unity and National Pride, Director Anand L. Rai. Best Short Film, Humsafar Marathi. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal and how their loss opens a poignant void, sparking and heartfelt search for memory, identity and emotional connection.
1: Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book Nani Iruvade Nimagagi Nadi Iruvade Nanagagi Kannada Cinema the Tattva Mattu Rajakiya. A report.
4: Rajkumar Periyasamy will get Best Direction Award for Tamil film Amaran. Sanjay Mishra will receive the award for Best Actor in a Supporting Role, while Sachana Namidas and Rupashree Varkadi will receive the award for Best Actress in a Supporting Role. Shashwat Sajdev and G.V. Prakash Kumar will get the award for Best Music Direction. Abhay Jodhpurkar and Vaikom Vijayalakshmi will receive the Best Playback Singer Award. Telugu movie Chinna Kathakadu will get the Best Children Film Award. Kalki 2898 AD was named Best Feature Film, providing wholesome entertainment. Captain Miller has got award for Best Film, promoting national social values. Best Gujarati Film is Maran. Best Oriya Film is Lahari. Best Kannada Film is Mithya. Best Manipuri Film is Sunita. And Best Gadwali Film is Dholi. With Dipendra, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the 6 MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of Parliament. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of Parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gutrad Road in Ahmedabad. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed deep grief at the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control.
5: Following the tragic outbreak of a massive fire at fireworks factory in Ahmedabad, Rapid Action Force personnel from the nearby Vastral camp rushed to the site immediately to rescue the trapped workers and retrieve the bodies. The injured have been admitted to nearby hospitals for urgent medical treatment, while the Ahmedabad Fire Brigade has brought the blaze under control and initiated the cooling operations. Senior civic officials, including municipal commissioner and mayor, visited the spot to assess the situation. Expressing deep condolences over the tragedy, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Preliminary police investigation suggests that the manufacturing unit was operating illegally. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Union Home Minister Amit Shah has extended condolences over the tragic accident at a firecracker factory in Ahmedabad. In a social media post, Mr. Shah said every possible medical facility is being provided to the injured. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River near Golagudam village of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. An investigation has been launched to ascertain the circumstances. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. In West Bengal, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah held several meetings at Uttarkonna in Siliguri today. More from our correspondent.
6: Union Home Minister Amit Shah today chaired meetings on the implementation of new criminal laws and on birth and death registration at Uttarkonna in Siliguri. Discussions were held on number of issues including the border security, law and order situation along with the security of chicken neck. In addition to the Chief Minister of West Bengal Shubhendu Adhikari, superintendents of police, district magistrates of North Bengal and senior BSF officials attended the meetings. Earlier, he took part in the Prohori Sammelon at the Juma Gach BSF camp near Siliguri, where he interacted with BSF personnel and took stock of border security scenarios in North Bengal. Mr. Shah planted trees and laid foundation stone for number of projects. Kollan Laha reporting from Kolkata for Akashvani News.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram 1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
7: Bhavan, Bharat, aur puri team

0: आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

पर दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनके गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपेंद्र

भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपेंद्र को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपेंद्र की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपेंद्र सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपेंद्र को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपेंद्र सिंह।

भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन दो बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

सिद्धि वर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था, आशा भोसले का ये गाना कविता अमृता प्रीतम

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ जी

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार। पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे न्याय की तरफ से भेजे, आईडी की तरफ से भेजे, या कश्मीर का सीएम बनकर भेजे, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन से पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे घूमने का नाटक कर पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन दादी।
1: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और

0: कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातार रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजीलॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजी अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।